0: DJ 淡静 विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदायी बास र मीठो खाना का लागी गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडी गैंडाकोट 5 मोबाइल 98612 20437।
1: अहिले बिहानको 6 बज्यो।

तो कुड़िया साड़ी गली च रहिंदियां इक पतली इक भारी ओ भारी दाते ब्याह हो गया पतली लगे प्यारी के दाल में नमक भुल गई के दाल में नमक भुल गई जद खिच के हो जद खिच के छड़े ने अख मारी

उससे भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर